कदीम तरीके तक जानू कदीम तक कदीम सजनू तक कदीम तरीके तक जानू कदीम तक कदीम।